0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: नास्ता छावा सांप कुछ नहीं कराए सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपन ही चल गए कुछ कराए तो वो सक्कू सांप बिखा थे नहीं रहता
2: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी ना तंदाई
3: ले नेपाल में पा दिना बिखा सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर से आकर तर कटला पास है दे भाग जो निचलना कह कर सास ठहर जो निशेक ना में से लक्का हुई सेक था और रठ डोम जो उन बड़ा रिसाहा मेरी कर था इनकर फाट फुले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय ध्यान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्का हुई सेक था वो और रठ कैदी जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देश तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनका रहना बाघे सांप ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिक न कटाई एकदम खतरनाक रहा।
4: बरखा छा को अनाज बिक्रीना समय में तापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूठ बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण तापन का बचारा नाश विदेश तापन का दसाई का घटना झूठ बिना कर लग पा जाए
5: झूठ जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा 10 डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाए लाख और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
8: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
9: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
8: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
9: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
10: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584-89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।
11: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज कुछ प्रदेश में भारी पानी पर्ना जोखिम, सतर्कता अपनाइना नागरिक उपरण मौसमविद के आग्रह। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस सहित के चार थोक कार्यक्रम संचालन के तैयारी तीव्र। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ल, खाना पकाने एलपी गैस के मूल्य भर यथावत। सिद्धार्थ तोल विकास संस्था के टीकापुर के सारण सभा ओराइल।

0: आप पूरा खबर हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। मनसून की न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान से फिर कुछ उत्तर लांग नेपाल के तराई भूभाग लगह सरल बा। एक कारण से अब देशभर साधारणतया मौसम बदल न से कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के कम स्थान में पानी पर्न बा। सुरपश्चिम प्रदेश के भर एक दो स्थान में हल्का भारी पानी पर्न कहलबा। आज देशभर साधारणतया मौसम बदलना बाकल से देश के हिमाली भूभाग में कुछ स्थान में मध्यम सम के पानी पर्न और हिमपात के संभावना बा। पहाड़ी भूभाग में तेहरी स्थान में मेघगर्जन चट्यांग सहित के मध्यम खाल के वर्षा हुईना बा। ओसह के बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग में तेहरी स्थान में पानी पर्न बा। मध्य प्रदेश के साथ ही कोसी लुम्बिनी और सुरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्यांग सहित के मध्यम पानी पर्न संभावना रहल बा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्न बा। गंडकी और बागमती प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्न संभावना बा। देश के कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना रहल और से सतर्कता अपना के काम करना नागरिक मौसम बीच से आग्रह करल बा। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि हुई बा कल से नेपाल आयल निगम गैल रात के 12 बजे से लागू हुई न करके पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन के मूल्य में वृद्धि करल के हो। निगम के अनुसार पेट्रोल में प्रति लीटर 3 रूपया डीजल और मटी तेल में 5 रूपया तथा हवाई ईंधन में प्रति लीटर 20 रूपया के दर से मूल्य वृद्धि हुईलक बतागिल बा। मूल्य वृद्धि संगे पेट्रोल और डीजल के मूल्य काठमांडू पोखरा डिफाइल पुस्तक में 200 रूपया में सुर्खेत डांगो मेमना 199 रूपया कायम करल बा। कल से ओस्तह के 4 अली बीरगंज चनकपुर अमलेशगंज भलवारी धनगढ़ी ओस्तक बीरगंज में 197.50 रूपया पुगल बा। कल से एलपी गैस के मूल्य भर एठावट धरल निगम से जनायल बा। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 शंकरपुर स्थित के सिद्धार्थ टोल विकास संस्था के पहल साधन सभा हुई बा। संस्था के अध्यक्ष भीमबहादुर भंडारी के अध्यक्षता में हुई साधन सभा में जागरकोट भूकंप में गैल बेला संस्था के प्रतित्व करती भूकंप पीड़ित है श्रमदान कर्णक संस्था के सदस्य कृष्ण बहादुर घरती है सम्मान करगिल बा। साथ ही अल्पायु में मऊठिलक संस्था के सदस्य सुनीता चौधरी के परिवार है श्रद्धांजलि सहित टोल विकास के सक्कु सदस्य हुकरा शेख नजत्रा नगद रकम उठा के सहयोग हस्तांतरण करल बाटे। टोल विकास संस्था स्थापना काल से लेके 200 रूपया के दर से मासिक रकम उठेना करल बा। हालसम 1,50,426 रूपया के कोष खड़ा करल बा। जमना 1,31,000 रूपया ऋण लगानी हुई बा। कल से विविध खर्च में 3,700 रूपया हुई बा। कल से 15,726 रूपया बचत रहा। संस्था के सचिव जनक रावल सभा में जानकारी करायल बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पाचे फिर सही भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट एक वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चित तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस टिकापुर कैलाली
3: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकी सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
4: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
7: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
6: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा रोल्पा जिल्ला के इरुङ्वा आसपास केन्द्र बिन्दु बनाके सोमबार के बिहान के 3.07 बिहान के 3 बजे 4.4 मैग्निच्यूड के भूकंप गैलबा राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केन्द्र के अनुसार भूकंप के केन्द्र बिन्दु रोल्पा के इरुवांग आसपास समेत रहल बता गैलबा भूकम्प बिहान के 3 बजे गैलक रेकर्ड करगिल केन्द्र से जनायल बा। भूकम्प के कारण हालसम कौनो मानवीय हो भौतिक क्षति के विवरण प्राप्त नहीं हुई। संबंधित निकाय से भूकम्प के अवस्था बारे थप जानकारी संकलन होती रहल बा। कैलाली में सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम करकलाग सरकारवाला सक्कू पक्ष सहमत हुई बाट जिला प्रशासन कार्यालय में काली खुलक सर्वपक्षीय छलफल में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि तमाम धर्मावलम्बी स्तक जनप्रतिनिधि तथा सरकारवाला सक्कू पक्ष शांति सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव कायम धर्न सहमति जनाइल बताइल बा। शांति सद्भाव कायम गर्न उद्देश्य के साथ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ के अगुवाई में श्रावण 18 गते धनगढ़ी में नागरिक सद्भाव रैली आयोजन करगिल बताइल बा। कर्जिना बा कलश सहभागिता केला राजनीतिक दल तथा सरकार वाला सकुजहीन आग्रह करल बा। उसंग नेपाल भारत सीमा नाका में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाइना सीमा नाकामा परिचय पत्र खुलना कागजात देखा गेल नेपाल प्रवेश गर्न देना एकमत हुई बताइल बा। छलफलमा सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग करके धार्मिक अवस्था के आँच ऐन करके हुइना गतिविधि हे निरसाहित करना करैना तथा एक औरजहान पक्षमा धार्मिकता के अवरोध नै करना हो। कानून विपरीत काममा सहभागी नै हुना प्रतिबद्धता व्यक्त समेत करगिल बा। जिल्लामा शान्ति सामाजिक सद्भाव ओ धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न उद्देश्य सहित गठित अन्तरधार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव समन्वय समिति हे सक्रिय बनाइनाओ पालिका स्तरमा विस्तार गर्दै लैजान बताइल बा। टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सहकारी संस्था संचालन सम्बन्धी नेतृत्व क्षमता विकास तालिम हुइलबा। 2 दिने चलक तालिममा राष्ट्रीय सहकारी बैंक के सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रमुख हीरा सुनार से सहजीकरण करल रहे। तालिम सहकारी संचालन करना तरीका वस्तक भ्रष्टाचार हुइसेकना जोखिम बचतकर्ता से बढ़ैना सिप सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में बचत तथा ऋण के बारे में प्रशिक्षण दैगिल बताइल बा। संस्था के उपाध्यक्ष मनोज कुमार साउत के अध्यक्षता में हुई तालिम समापन कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष धनंजय ढुंगाना लेखा सुपरिवेक्षण समिति के संयोजक रजनी शाही सहभागी काशीराम ढुंगाना संस्था के निवर्तमान अध्यक्ष बद्री प्रसाद भट्टराई लगायत से बोलल रहे। ब्राह्मण समाज नेपाल टीकापुर नगर समिति के सल्लाहकार समिति चयन करलबा। समाज के अध्यक्षमा दम्बर प्रसाद रिमाल के अध्यक्षतामा अटवार के टीकापुरमा बैठल बैठक से गंगाराम आचार्य के संयोजकत्वमा 12 सदस्य सल्लाहकार समिति चयन करलबा। सल्लाहकार समिति सदस्यमा श्यामराज पाण्डे डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद बजगाई सृजना शर्मा पण्डित हृदयराज रेग्मी सुमन प्रसाद नेउपाने टीकाराम आर्य गौरी शंकर जोशी चेतराज भट्टराई उसके महानंद वागले मोहन प्रसाद उपाध्याय नंदराज उपाध्याय चयन हुई बाट ब्राह्मण समाज कैलाली के जिला सचिव देवीलाल जोशी जानकारी कराइल बाट। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफम।
2: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं
8: वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
9: तपसिल
8: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
9: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
8: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
9: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो दुई प्रति,
8: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा तीन तीन महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
9: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 मा सम्पर्क गर्नुहोला।
8: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
10: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849-85-18-08।
12: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
13: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगर्के घरसे बाहर नै नै गर्छु।
12: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, यी पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
13: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860-71-024 ओ 9846-77-417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। चन्द्रमास अनुसार श्रावण के तेसरा सोमवार बिहान से पशुपतिनाथ लगायत के देशभर के शिवालय में दर्शनार्थी उपकरण के भीड़ लागल बा। दर्शनार्थी उपकरण के सहजता के लाख पशुपतिनाथ मंदिर के चार द्वार खोलल बा। कलश पशुपति क्षेत्र विकास कोष से जनायल बा। साथ ही बोल बम यात्री उपकरण के लाख विशेष व्यवस्था करगिल बा। मंदिर छिड़ना चार थो लाइन के व्यवस्था करगिल बा। पशुपतिनाथ संगे राजस्थानी के गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, बसंतपुर दरबार क्षेत्र मफे पशुपतिनाथ कहके मांजिना मक्खन महादेव लगायत के राजधानी के भारी छोट सकु शिवालय में भक्तजन हुकरण के लम्बा लाइन और स्थानीय समेत शिव मंदिर माफे लम्बा लाइन लागल जानकारी देहलवा। कैलाली के गेटा में रहल शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2083-84 में एमबीबीएस सहित के चार थो शैक्षिक कार्यक्रम संचालन करना तैयारी तीव्र पारगिलवा। विश्वविद्यालय से विद्यार्थी भर्ना के लाख आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षण अस्पताल, उपकरण तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन के काम है तीव्रता देहलवा। विश्वविद्यालय से एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, उस्तक बीएससी, एमएलटी, उस्तक बी ऑप्टोमेटी कार्यक्रम संचालन के लाख चिकित्सक शिक्षा आयोग में सेल्फ अप्रोजल फार्म समेत बुझागिल बा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर भीम बहादुर चन्द के अनुसार एमबीबीएसमा 50 पुस्तक, बीएससी नर्सिङमा 30, बीएससी एमएलटीमा 20 पुस्तक, बी अप टू मेट्रीमा समेत 20 करके 120 थो सीट के लग सेल्फ अप्रोजल फारम समेत बुझाइल बताइल बा चारोठो कार्यक्रम संचालन के लग विश्वविद्यालय के फैकल्टी व्यवस्थापन के समेत काम आगे बढ़ाइल बा। ये अंतर्गत 77 जाने प्राध्यापक सह प्राध्यापक उप प्राध्यापक लेक्चर पद के छनौट प्रक्रिया फिर शुरू हुई जनाइल बा। ओ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ परलबाट उहाँ हे अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर भक्तपुर के टोली से पक्राउ करल के हो। वहाँ कालिक दोपहर के पत्रकार सम्मेलन आयोजन करती आंदोलन की घोषणा करल रहे। यागे वहाँ समेत भड़काउ अभिव्यक्ति देना करल रहे। अब काली के पत्रकार सम्मेलन में समेत हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना के आंदोलन की घोषणा करल बाटे। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आज कुछ प्रदेश में भारी पानी पड़ना जोखिम सतर्कता अपनाइन नागरिकों का मौसम बीत के आग्रह। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस सहित के चार थो कार्यक्रम संचालन की तैयारी तीव्र। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ल खाना पकैना एलपी गैस के मूल्य भर यथावत। सिद्धार्थ टोल विकास संस्था टीकापुर के साधन सभा ओराइल। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सक भी अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम।

0: नरेल दादू मैं तो अपना फोन की डर ती आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ऊ गोन्दे में सुटल बाती बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटू अपना न अरे खादर पावे तो सफा सुखर बने लो बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना न
2: यहाँ पोली ऊपर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा बेर मको आप ना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना दिन चले दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस ना समय लागे चेक था नगर के कोई मोटरसाइकिल बाक लचे उन्हें मैं बैठा कर भौजी है ना सर पर उपचार केंद्र ले जी ना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से पापर करा दी बेरमिया अक्टेले से धन समस्या बिना हुए कोशिश बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाटक कठा असिक करने से लगता संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिखा
4: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 ले तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
0: तपसिल
4: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
0: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
4: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
0: नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
4: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग।

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी जमन की आवाज, समरस समाज के रक्षा बीसी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह पर स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत मानी टेक में बैठ के साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और मई बात अपनी ज्ञापन संग्रह मानी कसिन बहाल खबर बेचले कुशल मंगल आराम हुई एकदमै आराम बाटो अपने एकदमै आराम हुई कना भरपूर आशा बाटो जे जहाँ हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विटाल में यात्रा में जहाँ हुई भी जोन ठाव में हुई भी कल से कार्यक्रम में सहभागी जनाई सक सुन्ने 91.5 लाइन खुले बा तो कार्यक्रम में सहभागी जनाई कर भी कार्यक्रम में आईवे कर भी विशेष करके जनौनी कहकूट दिमाग खेना प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज सुनपुर खौलियों कन के शीर संपत्ति झलके नाम एक प्रश्न हमारे अपने लग गए थे। तो संगे हमारे लगभग श्रावण महीना के तेसरो सोमवार के दिन हो तेसरो सोमवार हमारे आज बटी तो अपने पके फिर महिला दीदी बहनों के आज पूजा पाठ करल हुई बिलागत में सावने व्रत बहुत बहुत ठाव में हरेरी पूजा फेन हुई टीबा हरेरी पूजा कहीं क्रम ठाव ठाव में चलती बा हुई हरेरी पूजा फेन सावन महीना में नहीं कही जाए कही के कहा बा हमार पुरखाओं कारण के तब हमारे हरेरी पूजा के चाल चलन हरेक गांव ठाव में फरक फरक दिन रहा था के दिन नहीं करते हैं कोई कहाँ कोई कब करते हैं कई के आदमी बुझे सक भी और हरेरी पूजा फिर ठाव ठाव में हुई थी बाबा कह के मैडम नहीं कह सकते और निशाना लगा एक लग हमारे प्रश्न अपन के उत्तर फोन करके लगे ना हो कार्यक्रम निशाना में अपने को सहभागी जन भी ये सुहाना मौसम में ये रमाइलो मौसम में एकदम रंगीन मौसम में अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता भी करना मैं अपने जानकारी करती कार्यक्रम के शुरुआत बात में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.2 लाइन खोलेगा

हजुर बेकले रमाइलो गीतके पाछे पुनः स्वागत कार्यक्रममा बाटोमा मिसन अमित भाई बगैथे आफ्नो सँगसँगै हाम्रा चाहिँ बटी त आफ्नो हाम्रा सँगसँगै रमाइलो गप गरेबी शून्य 91 5615 अर्थात 0915612555 लाइन एकदमै खुल्ला भा कार्यक्रममा सहभागी जनाइबिकन म एडभोकेट अर्जी अनुरोध और निवेदन गर्न चाहन्छु जे जहाँ कि कार्यक्रममा सहभागी जनाइबिकन म अर्जी गरम कहे कि कार्यक्रममा आफ्नो कनका लाग्ने हो आफ्नो कनका सँगै रमाइलो गप गर्न हो त फटाफट डायल गरी कार्यक्रममा सहभागी जनाइबी करिब 1:45 बजे सम्म आफ्नो कोर हाम्रो रमाइलो यात्रा रही तो कार्यक्रम में सहभागी जनता करबी कार्यक्रम आईटे करबी का नाम है अर्जी करम कहे कि अपने को हमार रमाइलो गपी का नाम है अपने कन जानकारी करते बटो जस्ते कार्यक्रम में कॉल करबी तो विशेष करके निशाना हमार प्रश्न अपने के उत्तर फोन कह के लगेना हो कार्यक्रम निशाना तो निशाना कार्यक्रम में जही सहभागी जनेबी का नाम है अपने कन अर्जी करम अनुरोध करम और निवेदन करम तो कार्यक्रम में सहभागी जनाइते करबी कार्यक्रम आईटे करबी का नाम जानकारी करना चाहत हो तो अठी पर छाउ गीत जोड़ब हम अपने कनकला गीत के बाद समय नहीं बाटू डायल करते करबी 091-5612555 अर्थात 091-5612555 लाइन खुले बा तब सब गलत एन्जॉय करी ई रमाइलो गीत से

हजुर र माइलो गीतकी बाजा फ्यान्स स्वागत बा कार्यक्रममा सँगारे कैसिनबा और हाल खबर अपने हुकन कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खोलल हुईबी गले से कार्यक्रममा आपने हुके हमन डायल करबे 091-561-255 अर्थात 091-561-255 लाइन एकदमै खुल्ला बा जे जहाँ हुईबी खतमे बारीमे दुकानमे मकानमे काममे धन्दामे बिजीमे विद्यालयमे यात्रामे जहाँ रहे से पनि कार्यक्रममा सहभागी जनाइबी ओकला खमा लाइन एकदमै खुल्ला बा 091-561-255 जहाँ रहे से पनि कार्यक्रममा चाहिँ बिल्कुल सहभागी जनाइबी मैफेन कोन काम मैफेन कार्यक्रममा सहभागी जनाइसकम और निशाना लगाई सकम कना सोच बना के कार्यक्रम में आईबी जनौनी कहकु दिमाग खेल प्रश्न थार विकल लिखित दस्तावेज नासवान प्रखौली के सिर्फ संपत्ति हमारे झलकैना में राख प्रश्न हमें ले गई थी तो अपने प्रश्न के पहले जवाब देवी पहले प्रश्न के पहले जवाब तब दोसरो प्रश्न के दोसरो जवाब तेसरो प्रश्न के तेसरो जवाब देवी कल से कार्यक्रम के विनर हुई यानी कि कार्यक्रम के विजेता हुई और कार्यक्रम के विजेता है 100 रुपये के रिचार्ज कार्ड हमें पुरस्कार के हिसाब से कार्यक्रम में कॉल करे हमें वहां यहां से पठाई थी कहीं कि मैं आप लोग जानकारी करती बात तो जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनित अगर विश्व 091-561-255 के लाइन खोले कार्यक्रम में फैंस खाव की जोड़ गीत के पास समय यानी बात हूँ

0: सुन्दी बिल्कुलै आफ्नो कन्ग्रेससँगै गफ गर्दै गतिको टेलिफोन लाइनमा आपुगलबाटै म बोल गर्न चाहन्छु। कहाँ से हजुर? राम राम।
1: हजुर राम राम।
0: के बोल्ली कहाँ से?
1: बहुत धेरै दिन रहके बहुत चर्चित संघरिया लिटिल बुद्धा बोल्छु।
0: लिटिल बुद्धा, लिटिल जी कहाँ से? ठक्कै
1: मैं कैलाली जिला चंगाबारी का गाँव में बोलूँ।
0: कैलाली जिला के चंगाबारी कल सेलम की चौहान नगर पालिका पड़ल नहीं हो?
1: एकदम एकदम।
0: ओके, एक सिलसिला में वहाँ पुगल बाती आज
1: मैं कहे पड़ल घर के डांग हो देवखर। अब यहाँ बिटिल बुद्धा का नाम अपनी सुन सकली बुद्धा का काम से नियम थी शांति संदेश फैलाई थी तक पते बाई जिला में शिष्य लोग ढेर बता हुए विशेष सावनी वर्षा के कार्यक्रम थे धार्मिक कार्यक्रम कार्यक्रम में शरीक हुईलक नाटल अलग हुए। यहाँ
0: मैंने एक प्रश्न पूछना लागल लिटिल जी लिटिल बुद्धा के नाम से नहीं
1: प्रश्न पूछी ना
0: अपने से इनका प्रश्न पूछना मन लागल कि पहले जैसा ई चाही सावन में व्रत बैठे
1: नहीं व्रत बटू बिहान से दिन तक मैं कुछ नहीं गिर
0: सावन
1: कर्णाली नदी में जल ले है उनके प्रतीक्षा में बटू मैं
0: सावन महीना में व्रत बैठे विशेष कौजा करे
1: नहीं तो ये तो पते हुई जी है
0: वह तो अपने से मैं पूछना चाहन अपने है इस सावन महीना में महिला दीदी बहनों के विशेष करके पुरुष भंडा पुरुष से थे महिला हूं ज्यादा व्रत बैठा देखो नहीं प्रत्येक सोमवार में मतलब मंदिर तीर्थ धाय देखो मंदिर जाए देखो वैसे के पूजा पाठ से यही बेला में हुई देखो और लगभग लगभग लहसुन और प्याज माछा मासू अंडा नहीं खा के व्रत बैठना चलाओ बाबा का विशेष करके काज बैठे व्रत कह के मैं अपने से जानना चाहूँ
1: महीने
0: चली कोई बात नहीं लिटिल जी कार्यक्रम में सहभागी जनैली आज निशाना लगाए पड़त प्रश्न के जवाब हम दे तो अपने है निशाना लगाए पड़ी तैयारी बाटी लिटिल जी वहाँ लिटिल लिटिल बुद्धा कह के हमन कॉल कैल रही वहाँ दांग देवखुर के घर मई वहाँ से

0: मैले बुद्ध से नै जान्न चाहन्छु कि काजे हो कि मै शान्ति फैलैति नेङठुं मै चाहिँ यी मतलब व्रत थे बाटू व्रत बाटू के सवाल के कारण से मैं वहां है प्रश्न पूछना चाहनु कि काजा बैठेंगे कि काजा बैठी और काजा बैठें। चलो कोई बात नहीं, शायद वहां नहीं बताना चाहना ही कोई बात नहीं हो। हमने वहां है सकारात्मक नहीं सोची, वहां जहां रहें खुशी रहें। और आज एक दिन चाहे निशाना लगेना हो, विशेष करके निशाना लगेना रहे तो कोई बात नहीं। ठीक ठीक ऐसी व्यापारिक विश्राम हो जाए, व्यापारिक विश्राम के पास मैं नहीं बैठू। रेडियो सर के कहूँ फैने जब तस्तम के अलग एक ऐसी सॉफ्ट कमर्शियल ब्रेक ब्रेक के पास मैं आने बैठू।
1: ओहट हेर बुढ़िया, बरखक समय थे बा पखारिक मुँह का रूप कर बाकी मुसवा आयल कलश या बा मुसवा खुशी सपुआ फिर आई सकता।
2: ओहो मोनिका ठक समझनो बरक अंदर पादर झफास से बाहर से कस्सा का पहिल बा काटा पर ना रहो।
1: हाँ असी करी हेर बुढ़िया, वो सिंहो कलश से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई। दूसरा सर परियार मने मिलकर सर सफाई कर दी, दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई।
2: हुई था वो बुढ़वा असिन डाला मदर ध्यान ध्यान पोहर झफास भी था उमा साफ नुख बैठल रह सकते ना।
1: वो और से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी। कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल, बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में चबरदार पड़ल। दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अना का उष्ठ कम हो जाए।
2: काल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसर थे बा
3: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था। मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट।
4: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सक
5: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से था लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला दस कटरस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
4: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
3: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
4: बीबीए र बीबीएस, ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी, फाइनान्स र मार्केटिङ,
3: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
4: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड, ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स,
3: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
4: मानविकी तथा

0: पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगी पानी हो घाम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा की उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
2: हजुर बिल्कुली लम्बा व्यापारिक विश्रामके पास फेन से स्वागत बा कार्यक्रममा लगभग लगभग कार्यक्रम निर्धारित समय डकर काट लागला टाटा बाबे के जन बेला हो गेल बा उमाले तरबाट सम रेडियो सुनके साथ दिले अपनो एकदमै धन्यवाद टेक्निकल के साथ दिले बाबु रत्नपुर मगर पे धन्यवाद यति अन्तिम एक टर रमाइलो गीत छोटी मा मिसन आएका छौ राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पल शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर दिए।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बुका पिरै ठ कबु पेन्सिल रै ठ कबु झलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनले से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुइति जरम भर भर बराइति रहत
0: का हुइ कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रटगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरै थी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छानकन झोला नहीं आना सको ठुनी
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में
2: रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
0: सुन्दो कि नै वनन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उने न पट्टा नि पैना त
4: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
4: ए ले ले ठीके बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स म घर गहना बनाई
5: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684141208 ओ 98486239261
6: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
7: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
6: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417
9: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: यद्दे मुस्का डरत आज हेरो त बुढवा
1: ओहो त हेर बुढिया बरखक समय छेबा बखारिक मुहका रुकल बाकी मुस्वा आयल कलश आब मुस्वा खुसी सपोसे आइ सकता
0: ओहो होनिका ठक समझनो घरक अंदर पादर सफास छे बाहर से कत्था कत्था हिलबा कात पर ना रह
1: हां असी करी हेर बुढिया ओसिन हो कलसे काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा असल परिवार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
0: मीठा हो बुढ़वा असिन जाला मत ध्यान घास फोहर घसवास भी था मा साप नुख बैठल रह सकते ना
1: वह और से तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुचू के पैठनी सेकना में कर चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से साफ ऐना का उत्साह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाटक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिलापुर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सकता
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
7: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
6: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
7: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
6: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
7: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
8: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना रासनका गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 9868147799 9824625232 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824628225

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाउं से झोला अनला से था लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटाका था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगलान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, एक आनल झोला जस कटरास बाटिन। ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया। मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो हो, कसो कालले छिटो नलाग्यो।
4: मैले चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ, के भएको छ तलाई?
3: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या, कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको छ, त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्या। म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्या हुन्छ, खानै सक्दैन।
4: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमा मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
5: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
6: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ढकरला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलेको सूचना।
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ एग्रीकल्चरमा स्नातक तह बीएससी एजीमा नियमित तर्फ 6 जना,

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप सम्रा पात्र नेपाली पात्र में फिर सुनती धलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय की विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्य सलाह गोष्ठी सम्पन्न। कंजरपुर मसी भंडार छवि के सामान सहित 4 जना पकड़ाऊ। सुनकोशी नदी में कार खसल 4 जना बेपत्ता। वो आगामी 3 दिन कुछ ठाउँमा भारी वर्षा के संभावना सतर्कता अपनाइन आग्रह।

0: पूरा खबर टीकापुर तीन शंकरपुर स्थित पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय की विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न हुँदा विद्यालय की व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुलक कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नरेश अवस्थी प्रमुख अतिथि रहे। गोष्ठी में सिकाई उपलब्धि वृद्धि करना, विद्यालय में विद्यार्थी संख्या वृद्धि करना, त्रैमासिक रूप में अभिभावक भेटघाट और अंतरक्रिया कार्यक्रम कटी जैन और स्थानीय स्रोत साधन के बढ़ी उपयोगी करके शिक्षण करना लगायत सुझाव आईलवा कार्यशाला गोष्ठी में सेलक सुझाव विद्यालय सुधार योजना में समावेश करके कार्यान्वयन करती जैनऊ विद्यालय के अवस्था सुधार करती जैन विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेज बहादुर बोहरा जानकारी दिलवाट पासक समय में विद्यालय में विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रम धमाधम संचालन गैटी रहलवा। कञ्चनपुरमा से भन्सार छली सामान सहित चारजना पक्राउ पर्नबाट कञ्चनपुरकी कृष्णपुर नगरपालिका पाँच गुलरिया बजार स्थित गोप्य सूचना क्याधर्मक ओहठामा बैठना 34 वर्षीय पदम भण्डारी सञ्चालन कलक कालिका टेन्ट हाउस भित्र लुकेलक छिपैलक धलक अवैध भारत मसे भन्सार छरी कर्केलक अन्दाजी मूल्य 1,58,700 बराबर के साड़ी धोती सुटपीस कुर्ती उक्त सामान अलग प्रयोग कलक मोटरसाइकल थान दुई लगायत के सामान फेला पलक निज टेन्ट संचालक सहित चारजना पक्राउ पर्नमा टेन्ट संचालक पदम भण्डारी भारत मसे भन्सार छरी कर्केलक मणिनकी कञ्चनपुरकी भीमदत्त नगरपालिका दुई उल्टा खाम बैठना 37 वर्षीय जीत सिंह पार्की सोहे नगरपालिका के 11 बैठना 34 वर्षीय थानेश्वर प्रसाद दोषी कैलालीकी गोदावरी नगरपालिका एक अतरिया बैठना 27 वर्षीय दीपक भट्टर हलवाट वहां उग्र चारजन इलाका प्रहरी कार्यालय गुलरिया कञ्चनपुर मस्से खरलक प्रहरी आइतबार बिहान के पकड़ाउ करके आवश्यक कार्यवाही केलाक भन्सार कार्यालय गोड्डा चौकी कञ्चनपुर में बुझेलक जिला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर जनिलवा। खोज खबर में एक विश्राम विश्राम पाछा फिर से विष्णु तिरवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएन ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाईफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
0: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
5: के गरु त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
0: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
5: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
6: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर, ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0915600595, मोबाइल नम्बर 98484273।
0: मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलके फिक्कल गाउँपालिका 2 नौर पूर्व सोमबार बिहानके बस हो कार ठक्के खैलक यात्रु सहित कार सुनकोशी लदियामा बेपत्ता हुला। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुनकोशी लदियामा बेपत्ता हुलक कार भित्र चारजना रलक खुलबा। काठमाडौँ बसे ओखलढुङ्गा तर्फ जैटिकलक यात्रु वाहक बस बिहानके करिब 11:30 बजे हो कार ठोके दिलक कार सड़कमा से करिब 150 मिटर तर सुनकोशी लदियामा खसल रह घटनाकी विस्तृत विवरण ऐना बाँकी रहलक। प्रहरी न्याय परीक्षक विजय श्रेष्ठ जानकारी दिलबाट उहाँके अनुसार घटनास्थलमा प्रहरी टोली पुगे खोजी तथा उद्धार कार्यालय तीव्र बनेर बाट कार बेपत्ता यात्रु के खोजी जारी रहलक। उहाँ बुटिलबाट सुनकोशी लदियामा बढ़ियाके कारण बेपत्ता यात्रु कार के खोजी तथा उद्धार कार्य प्रभावित हुलक। प्रहरी जनैलवा बेपत्ता यात्रु तथा कार के उद्धार के लाग आवश्यक उपकरण सहित सशस्त्र प्रहरी बल के बस क्याम्प कुरकोट मसे गोताखोर टोली नेपाल प्रहरी और अन्य सुरक्षा निकाय समेत घटनास्थलमा खटलक खोजी तथा उद्धार कार्यमा जुटलक। प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किप श्रेष्ठ जानकारी दिलबाट राष्ट्रिय सभाकी आज बैठकमा सांसद थुक्रा आपसी सद्भाव सामाजिक एकता हो धार्मिक सहिष्णुता कार्यमा धरपना जोड़ दिलबाट सभामा सांसद थुक्रा सुशासन हो जनजीवी के किसान के समस्या समाधान युवा स्वदेशमा रोजगारी सृजना हो आपसी सद्भाव कायम गर्न तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणके लागि प्रभावकारी पहल गर्न सरकारले ध्यान आकर्षण गरेलबाट बैठकमा सांसद युवराज शर्मा वर्तमान सरकारमा लोकतान्त्रिक विधि ओ कानूनी प्रक्रिया अनुसार आखर नै बहरलक कारण कैयौं निर्णय मसे सरकार फिर्ता हुन कति रहल यही सरकार मसे असफलता पुष्टि गर्न बोटिलोबाट सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैर नेपाल मानव तस्कर के ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनलकटी प्रविधि के दुरूपयोग करके उटीहल मानव बेचबिखन बहर्दो सुरक्षा रोक्न सरकार ठोस योजना लान पर्ना बुटिलोबाट सांसद सन्जना देवकोटा कोशी मध्य प्रदेश महिला सम्प्रदायिक तनावकी विषयमा ध्यान आकर्षण कोरैटी सदियों से रहती अलग सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक एकतामा खलल पुग्न कार्य कोनोफे गर्न नै हुन बुटिलोबाट सांसद किरण बाबु श्रेष्ठ लोकतन्त्रमा नागरिकी जीवन और स्वतन्त्रता के रक्षा गर्न सरकारके पहिलो दायित्व रलक बुटैटी मुलुकमा बहर्ती गलत हिंसा साम्प्रदायिक तनाव राजनैतिक किसतहानी के अन्त्य लाग्न जिम्मेवार बन्न सरकार आग्रह कलबाट सांसद श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरकार के कार्यशैली सीमा सुरक्षा और संविधान संशोधन के विषय में प्रश्न उठेटी सुस्ता कालापानी और लिपुलेख जसिन संवेदनशील सीमा विवाद समाधान कर सरकार कूटनीतिक पहल कर नई सकल का आरोप लगे सांसद रूखमणी कोइराला कोशी मध्य प्रदेश में हिलो घटनाप्रति समय में नई सचेत मन के सुरक्षा संवेदनशीलता बिना सरकार आग्रह करती राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव विश्वास और शांति स्थापना में ध्यान देपना बुटेलबाट
7: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं
8: ना हो का मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी मिन कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
9: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
10: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9845143426।
11: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
12: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
11: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौँ नजम्ने तालुको रौँ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
12: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
11: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
13: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
12: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: आगामी तीन दिन देशकै धेरैजसो ठाउँमा वर्षा तथा कुछ क्षेत्रमा भारी वर्षा के सम्भावना रहेक सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के आज देशकै पहाड़ी भाग के एक दुई ठाउँमा तथा लुम्बिनी प्रदेशकै तराई के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना रहेक जनाएर कर्णाली प्रदेशकै पहाड़ी क्षेत्र तथा लुम्बिनी प्रदेशकै पहाड़ी तराई के एक दुई ठाउँमा धेर भारी वर्षा हुइसक्न विभाग पूर्वानुमान बा विभागकै प्रवक्ता विभूति पोखरेल के अनुसार विगत 24 घण्टामा देशकै अधिकांश ठाउँमा मध्यम वर्षा हुलेसेफे कुछ ठाउँमा भारी से थियो भारी वर्षामा आफ्नो हिलवा आस रातकै कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली पहाड़ी तथा तराई के एक दुई ठाउँमा लुम्बिनी प्रदेशकै पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रमा भारी वर्षा के सम्भावना रहलवा अस्नाको कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्रकै एक दुई ठाउँमा थियो भारी वर्षा हुइसेकना विभागद्वारा मौसम बुलेटिनमा उल्लेख बा मंगलबार कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी भूभागको मध्य प्रदेशकै एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाकै सम्भावना रहेक विभाग जनाएर बुधबार फे कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्र तथा लुम्बिनी प्रदेशकै पहाड़ी तराईकै एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाकै सम्भावना रहेक विभागकै पूर्वानुमान बा विभाग आगामी तीन दिन वर्षाकै गतिविधि बढ्न हुलक विशेष गरी सुन्तला रंगकै संकेत कलक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्न नागरिक सतर्कता अपनाउन आग्रह कलबाट। यही समाचार संघ खोज खबर बराली जनाइसे पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेरि पशुपतिनाथ आधारभूत विद्यालय के विद्यालय सुधारे जननिर्माण कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न चन्द्रमुसी भन्सार छलीकै समर सहित चारजना पक्राउ नदीमा कार खस्के चारजना बेपत्ता ओ आगामी तीन दिन से ढेर भारी वर्षा की संभावना सतर्कता अपनाउन आग्रह दुईटा अब क्लास खोज खबर प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई यहाँ धन्यवाद दिए अब क्लास खोज खबर से मैं सीता चौधरी विदा हूँ यहाँ पास छ बजे की खोज खबर सुन्दी सामुदायिक रेडियो टीका प्लेटफॉर्म सुनती।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग रहा था
1: पेशाब लाता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको ना टा कोशिश हो कल से मैं टॉर्च लाइट वो लच्छी दिए तू लेख जावो
1: काजे चुनो लच्छी वो टॉर्च लाई
0: कहाँ करो रही दाई राती डाला बाहर निकल पड़ा से वाटवाइन जाए पड़ा से दहिया फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लच्छी लेख के हो जाए पड़ा कहाँ करा की बर्खा छेक बा सांप रह छेक था टॉर्च का अजनाली सापन दिया खसेक दी था वो लच्छी ठेक ठेक आवाज सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूल मैडम सर मुख साफ मुख से ना ठाव सी न्यांग पड़ला से वो काम कर पड़ला से दहिया फेठा फुसिया विपथा गई कर सीखे लाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ढ्यांगा चलक ठाव में न्यांग पड़ला से लम्बा लच्छी देख ठैक ठैक बजेटी न्यांग पथा गई कर कल बाट
2: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना बिलकुर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सक विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना हुने न पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएका अंश के कतरा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाई आऊ जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: को आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ ईसीजी र ल्याब टेस्ट को सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को नजिकै टीकापुर। टाढा का बिरामी नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारी को लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-770। समय बिहान 10 बजे देखि दिउँसो 3 बजे सम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: काठमाडौँ नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। टिकापुर नगरपालिका 1 नम्बर ओडा कार्यालयको जरूरी सूचना। ओडाका सड़कहरू नजिक पशु चौपाया बाँधेर राख्दा सड़कमा उभिने पशु चौपाया बाटोमा पुग्ने गरी बाँध्दा दुर्घटना हुने बाटोमा आवत जावत गर्न अवरोध हुने र बाटो बिग्रिने भएकाले गाई गोरू भैंसी बाख्राहरू बाटोमा पुग्ने गरी नबाँध्न यो सूचना जारी गरिएको छ। कसैले असभ्य तरिकाले गाई गोरू बाटोमा बाँधेको पाइएमा निगरानी गर्न बाटोबाट हटाउन टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू युवा समाजसेवीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। बाटोमा नबाँध्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको पाइएमा टिकापुर नगरपालिकाको 1 नम्बर ओडा कार्यालयको फोन नम्बर 98484040598 वा नगर प्रहरीको फोन नम्बर 98484067 खबर गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। 1 नम्बर ओडा कार्यालय टिकापुर नगरपालिका।
2: कार्यक्रम छोट मिट साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
3: जब देखनो तू हिन है।
2: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में 1 जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915612555 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट। अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे वस्त बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
3: दाजु हेर्नुस् न भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै राख्या छ, तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
4: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न।
3: दाई बरु एक पटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि?
4: तैले भन्छस् भने लौ जाम न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एक पटक।
5: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर। फोन नम्बर 091560095, मोबाइल नम्बर 98484273।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिले रहेठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फि ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई टीच जलम भर भर बरैठी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपि हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन बो ओटो कहाँ टीकापुर म रलक रगे या झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेन्सिल रहीन ना झोला फाटल हुई कैक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ
4: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
3: वडा नम्बर 4 को कार्यालय साउन 17 देखि 19 गते सम्म
4: वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म
3: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म
4: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म
3: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म
4: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म
3: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
4: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म
3: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म
4: याद गर्नुहोस्

0: का हुई कमल आयने बुक खाइल बाटो तो
1: एरी ने काका काई फुला टूरे बारी में गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सबको कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम से उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सबको कटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्वदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदंग से उपचार केंद्र विषय में मैं फिर सुनल कर रहू
0: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था हस्तक्ष चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस ना फोन कर सकले बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहरा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेवा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 23 गते र 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टिकापुर अस्पताल टिकापुर कैलाली

သနာစာယဘူပိဏယနမောနမမဟာရာဇပရိခိတ်ယစ်ကိစင်ဘာတာအပ္ပရောစံရက္ခဏစံဗရဒန်ကိုဝိရှေမာဆောင်နကာဒိလေပௌရာဏေစုဒာဂ ्ञ ံဂရနုံစဘဂဝါန်ဆရိဟရိပရမတ်မာအပ္ပနုပရမဓမ္မမနေအပ္ပနုဇဘဃရဇနာကာလာဂိစပယရိဖိဘခ္ရှုပ္ပဘုအဝါပဉ္စပန္နဘလချိုဒိနုမဟုလောတပဉ္စပန္နဘရုတိမေရုဘရှိရောအောမဇန်စုဘန္ဒဘဂဝါန်ကရှ ణ మీరు సారథికు రూప విరాజమాన్ హై బక్షు ప్రభు హజరులై మేలే ధేరే తక్లిఫ్ దీ దుఖ దీ బాధా దీ అడసన్ దీ మేరు ఈశ్వర్ మో హజరుకు పావుకు సేవా గర్న అప్ని సంగే జాన్చు భనేర అర్జున్ జీ జాను బీచ్ బీచ్ బాటోమా జాంగాల దేశ్ హరి స్త్రీ శైల బేకంట కామకోష్ణి పురి శరత్ బ్రహ సహరులై కాటేర పాలన భయకో థియో యువదిష్ఠి మహారాజ్ సారే శోక్ గర్న మో మేరు భగవాన్ కృష్ణ లాజ్ మేలే బిదా దీను పరు మేరు దర్వారలై చోడేర మేరు హరి ఆజ సవారి హును బో భనేర రాజా యువదిష్ఠి బహుత్ రును महाराज पंचपाणवर सारा संपूर्ण इस किसिम जगत का मालिक श्रीहरि इसका किसिम सरास्त्र सवारी हूं भो परमात्मा पालन भैस आनंदमय कोश भो बड़ा आनंद भो ध्यान भो और मनन भो रीर्तन भो रि पछाड़ी बाट अमात्मा को सम्मान गारद सम्मान करो प्रभु आराम शासन गए आपना खोपी में विराजमान हुई बक्सो ये पंचपाणवर मध्य में राजा युधिष्ठिर बहुत चिंता पर्यो क्योंकि जब अब पांच भाई पांडव हमी बुढ़ा भयम हमारा संतान शरण घटोत्कच मरी हालियो बब्रुमान मरी हालियो श्रुत कीर्ति मरी हालियो अभिमन्नु मरी हालियो अब कोई कई छरण पांचाल मरी हाले तब अब हम संतान बने उत्तरा को घर बाट जन्मी को बालक ले मापरे संवर्धन होने सकता छोरी जन्मियो बने अराजकता फिर बो लड़ाई में जीती को क्या लगो आठ पटक समय हाने को बाण बाट जब गर्व तुर गयो हम गति होने हो भगवान यही प्रार्थना कर रहे थे पंच पांडव त्यसै बेलामा अचानक पूर्व महारानी उत्तरा महारानीबाट गर्व भेडियो गर्व भेडिएको हुनाको कारणले त्यो बालकको नाम यस किसिमबाट जन्मनासाथ मृत्युको घडीमा प्राप्त हुन लागेको देखिसकेपछि मेरो भगवान कसरी बचा भनेर बारम्बार गर्न प्रार्थना गर्नुभयो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय चरण गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भनेर प्रभुको प्रार्थना गर्दा गर्दैमा त्यही बेलामा टोपलुकै कृष्ण सवारी आई बक्सु परमात्मा ने आपो त्यो मरे को मृत्यु को घड़ी को प्राप्त को बच्चा लाई अस्वस्थाम पसृष्टे न ब्रह्म सृष्टि न रुते जसा उत्तराय हतो गर्भ ईशे न जीवित पुनः त्यो बच्चा लाई च्याप समातेर ओर पने रक्षा पर अपने रक्षा गर्भ में अपने रक्षा गर्भबाट बढ़ी सके पछि पने रक्षा निस्तेज में अपने रक्षा गरी बक्सेर रक्षै रक्षाबाट सुरक्षित प्रदान गरेको हुनाले बच्चाको नाम परीक्षित भन्ने परीक्षित महाराज भन्ने नाम राखियो। लो अब यसको नामावली क्रम त परीक्षित भयो। यिनले के काम गर्छन् आज्ञा गर्नुस् भन्दाखेरिमा महाराज परीक्षित यिनको नामावली क्रम यो भयो भनेदेखि यिनले गर्ने कामको वर्णन बताउँछु सुन्नुहोस्। यिनी जब रन्तिदेव राजा जस्तो दानी हुनेछन्, शिवी राजा जस्तो जब दयालु हुनेछन्, भगवत भक्तिमा बहुत प्रेम राख्नेछन्, प्रेम श्रद्धा को भावना ने विकास होने तर इनको जब 60 वर्ष का आयु होने मरने बेला में सर्प ने टोके मरने अगति रक्षित होना का लगी श्रीमद भागवत रूपी अमृत कथा श्रवण करने लो मेरो प्रभु यो जब मेरो नातीला तीनटा कुरा सतायो 60 वर्ष को मेरे ज्यादा सानो भो छोटो भो असदि पछाड़ी बा फिर सर्प ने टोक्न थो अगति को मार्ग मेरो जब नाती अब इस कारण चाँडै नै मृत्यु हुनु पर्यो के गर्ने भन्दा मेरो महाराज भन्दा नमान्नुस् इसको वास्तविक कुरा के छ भन्नुहोला भनेदेखि सर्पले टोके पनि यिनले भागवत सुनेर मुक्ति हुन्छन्। तर तपाईँको नाति 60 वर्षमा मृत्यु हुने हुँदा नाति पलाती पनि 35 वर्षको भइसकेको हुन्छ के को चिन्ता हो भनेर यसरी महाराज परीक्षितको जन्म मृत्युको जन्मको लक्षण र मृत्यु पर्यन्त हुने घटनाको चक्र पनि आज्ञा गरे भक्ष लौ त सुनका दृश्य प्रणाली यिनै जब गर्भे टोरा महाराज परीक्षित श्रीमद भागवत सप्ताह सुन्ने नंबर एक महा व्यक्ति ने हुन्छ भन्ने सम्मको कथा है सद्याबाट।